मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बैन दूजा वरना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आस्था महला पंजवा आस्था महला पहला तित सरवरड पहले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक दन की शरणा जन तू ना ही विसरिया आस्था महला पंजवा भई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की तेरी बरिया

प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत फले बुरे की पीर बशानत चीटी दे कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के बट बट की जाने जब उध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्भकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ।

महामूढ़ कछु भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चिन्त नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिनत वे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा अब बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संग्रो। दोष जिते उठ बत उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब शरणी परे, तनके दोष्ट दुगत वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दोष्ट रहष्ट टरह तत्काला। कृपा दृष्ट धन जाहिन हरे हो, ताके ताप धन कमो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष्ट शास्व सक न कोई। एक बार जो

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सवै बहुत हेद कहे हम एक न जान्यो। सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

और राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी।

सफल दर्शन अकाल मूर्त ब्रह्मी हो बनहारा कंठ लाए कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड़ी वड्याई अचार्य शोभा कार्य आया रासे नानक का गुरपुरा भेटो सगले दुख विनाशे वड़ी वड्याई अचार्य शोभा कार्य आया रासे नानक का गुरपुरा भेटो सगले दुख विनाशे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओ सोहिला गौर जी की महला पहला ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता की जय करते गए विचार उदत गर गाव सोहिला शिविर सरनहार तुम गाव हो मेरे नर पाओ का सोहिला हो वारी जब सोहिला सदा सुख हो रहा हो नैत नैत जी अड़े संभालिया ना हम देखेगा देवन हार तेरे जाने किमत ना पवे जिस दाती कवन समार संबर सा लिखिया मिलकर पावो तेल दिल सजना शीशड़िया जो हुए सहर समेल घर घर यो पहुंचा सुडे नित भवान सदन हारा सिमरी है नानक से भी अवन राग आशा महला पहला छे कार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वे समे तो बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तो राव जिस दसा घड़िया पहरा खेती बारी माह होवा सूर जेको रुत अनेक नानक करते के पेश राग तना श्री महला पहला गगन मै साल रव चंद दीप पवानी तारिका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन छबरो करी सगल पन राए फूलांत ज्योति कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत तेरी राव सहस तब नैन नन नैन है तो एक सहस मूर्त नना एक

मंडल खंडाही पूर्व लेखत लिखे गुरु पाया मन हर लेव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वडाही कर डंडौत पुन वडाही राव साकत हर साधना जानिया तन अंतर हो मैं कंडाही ज्यों ज्यों चले जुग दुख पावै जिम काल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण पव खंडाही अविनाशी पुरख पय परमेश्वर बसो अखंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डाही जन नानक ना बाजार टेक है हर नाम ही सुख मंडाही रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मिता संत कहन की वेला इया खाड़ चलो हर ला आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सरहारी मान गुरमिल का सुवारी रहाओ इस संसार विकार संसे मैं तर ब्रह्म ज्ञानी जिस जगह पिया वे रस कथ कथा तिन जानी जा कवाई सुई बिहाज हो हर गुरु ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहर न होएंगो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोका कर संतन की तूरे अंतर जामी

सोई सोई देव है। अगे वचन करते हैं प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए। परमेश्वर का सिमरन करन दे नाल मन उत्ते जमी हुई मैल लह जाती है, मत उत्ते जमी हुई मैल लह जाती है। ये तरीका सानू गुरु नानक पातशाह जी ने जप जी साहब की पावन पवित्र बाणी च दसता, भरी मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। मत उत्ते जमी हुई मैल परमेश्वर का नाम जप के लेंदी है। अमृत नाम रिदमाए समाए, तो परमेश्वर का अमृत वर्गा नाम हिरदे दे विच समा जांदा है। प्रभ जी वसै साध की रसना, हुण परमेश्वर रहिंदा कित्थे है? महाराज कहिंदे परमेश्वर रब दे प्यारां दी रसना उत्ते रहिंदा है। हर मनुख दी रसना उत्ते परमेश्वर का नाम है। जिहड़ा नाम जप लैंदा है वह परमेश्वर दे दर ते प्रवान हो जांदा है। भाव साध जना दी रसना ते परमेश्वर वसदा है। साधु परमेश्वर नूं हर वेले चेते रखदे है। हुण साधु कौन है? जिहड़ा परमेश्वर नूं चेते रखदा है, जिन्हें परमेश्वर की याद अपने हिरदे विच वसा ली उहो ही परमेश्वर का प्यारा बन जांदा है। नानक जन का दासन दसना, एहो जे नाम जपन वाले साधुओं दे चरणा दे नाल जुड़ के नानक ए आख मैं उन्हां गुरमुखां दे सेवकां दा भी सेवक हाँ। हे परमेश्वर मैनू उन्हां दे सेवकां दा सेवक बना लै जिहड़े तेरा नाम जपदे आ। ते जपदे कौन है? जिहड़े परमेश्वर दा नाम जपदे आ उन्हां नूं की पावर मिलदी है, की शक्ति मिलदी है? महाराज जी कहिंदे प्रभु कौ सिमरहि से तनवंते। जिहड़े परमेश्वर दा सिमरन करदे आ वो बहुत बड़े तनाड़ है, धनवंत है, धनी लोग है। हुण दुनिया के लोग तनाड़ उहनूं मनदे आ जिहदे कोल पैसा बहुत है, पर ये पैसा गुरु जी कहिंदे किसे कम नहीं आना, कूड़ है, झूठ है। गुरु जी की दित्ती हुई मत दे विच ये समझ मिलती है भी जिहदे कोल नाम का खजाना उ सब तो बड़ा धनी है, वह धनवंत है। प्रभु को सिमरै से पतवंते, तो जिहड़े परमेश्वर का सिमरन करते हैं वो पतवंतियां की लिस्ट में आ जाते हैं, पतवंतियां की लाइन में लग जाते हैं, भाव के इज्जत वाले बन जाते हैं। प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, जिहड़े जान जिहड़े मनुख परमेश्वर का सिमरन करते हैं वो मन्ने परवन्ने हुए आ, भाव गुरु के दर से प्रवान हो जाते हैं। प्रभु कौ सिमरै से पुरख सुजा, पुरख प्रधान जिहड़े परमेश्वर का सिमरन करते हैं वो मनुख चंगे आ, प्रधान गिने जाते हैं। प्रभु कौ सिमरै से बेमोहताजे, जिहड़े परमेश्वर का सिमरन करते हैं वो किसी के मुहताज नहीं होंगे, किसी के गुलाम नहीं होंगे, किसी ते इच्छा नहीं रखते। प्रभु कौ सिमरै से सर्ब के राजे, ते जिहड़े परमेश्वर का सिमरन करते हैं वो तो सारिया तो बड़े राजे बन जाते हैं, बादशाह के भी बादशाह बन जाते हैं। प्रभ कौ सिमरै से सुखवासी, जिहड़े परमेश्वर का सिमरन करते हैं वो हमेशा सुखी वसते हैं। प्रभ कौ सिमरै सदा अविनाशी, क्योंकि उस परमात्मा का सिमरन करते हैं जिहड़ा अविनाशी है, जिहड़ा कदे जमदा मरदा नहीं, उस परमेश्वर का सिमरन करके, अविनाशी परमेश्वर का सिमरन करके मन में आनंद पैदा होंदा है। सिमरन ते लागे जन आप दयाला, धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहिंदे प्रभु का सिमरन करन दे विच उही मनुख लगदा है जिहदे उत्ते परमेश्वर आप मेहरबान हुंदा है, कृपा करदा है। नानक जन की मंगैर वाला, जिहदे ते परमेश्वर ने कृपा करके अपने नाम जपण दे विच ला लिया, महाराज कहिंदे मैं उहदे चरणा की धूड़ी मंगदा, मैं उहदे चरणा की खाक मंगदा, उहदी संगत मिल जावे मैनूं। जिहड़े परमात्मा नूं सिमरदा कौन है? हुण उहनां दी गल करदे महाराज। प्रभु कौ सिमरहे से पर उपकारी, जिहड़े मनुख परमात्मा नूं सिमरंदे है

अहन सुसहज सुभाए। दर्शनाओं पर से आए गुरु का जन्म मरण दुख जाए। समुदि नूर अरसों पुरसों चटिया। सुध सच्चे पातों साहब

बिना हरि दे जप तो हरि दे सिमरन तो जितना धार्मिक कर्म कांड है महाराज कहते हैं अजाई है एवं जप नहीं है बाकी सारे कर्म कर रहे हैं। इसनों भर्तरी कहा कर रहे सन बरात ते बड़ी लंबी चौड़ी है सोने कपड़े पाए ने गहने सजाए ने लाड़ा ते है ही कोई दानी भी बड़ा है ज्ञानी भी बड़ा है सेवा भी बहुत करता है नाम ते जपदा ही बराती बराती कट्ठे किते ने लाड़ा ते है ही कोई प्रभु दे नाम दे जपने प्रभु दा मिलाप करना सी होते है कोई नहीं। इस वास्ते साहब कहते ने सारे आचार आचरणशील और दुनियावी कर्म ते धार्मिक कर्म कांड बिना हरि दे सिमरन दे जप तो फिजूल समझ ले व्यर्थ समझ ले।

मन अडोल किसे किसे दा हुंदा, सत्संग सब दा नहीं हुंदा। मन दा अडोल हो जाना, अडोल दा अर्थ है कि मन एक थां ते यकसू हो जाए। शरीर तां यकसू हो जांदा योगियां दा, मन नहीं यकसू हुंदा। सतगुरु जी कहते जो मन अडोल हो जाएगा तैनू आनंद प्राप्त होगा, तैनू पता लगेगा कि तू आनंद देने वाली वस्तु आत्मा जड़ी है उदे नाल जोड़ रहा है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, तांते सतगुरु का अर्थ है आत्मा, और आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अमृत नाम है, आत्मा ही आबे हयात है। इस आत्मा की खोज ही मनुख करदा आया है, इस रस नूं लभदा आया है। ये रस लभ्या किन्हां नूं है? जिहड़े पूर्ण सतगुरु की शरण विच गए ने उन्हां नूं लभ्या। श्री लहणा जी की बहुत वड्डी खोज सी जदों गुरु नानक दे चरणां विच चले गए उन्हां नूं ये अमृत की दात प्राप्त हो। अमृत हर का नाम है मिल पीवो पाई, सतगुरां नूं मिलके इस अमृत तत्व नूं तुसीं प्राप्त कर सकते हो। श्री लहणा जी ने कीता, श्री लहणा जी की संगत विच आके गुरु बाबा तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब ने यह प्राप्त किया। जेड़ा भी सिख आज तक श्री गुरु नानक साहब के चरणों में लग गया उसनु इस रस की प्राप्ति हुई है, वो अमृतधारी सिख होया है। मेरे मन जाप प्रभ का नाम, सुख सहज आनंद पावे, मिली निर्मल थाओ, मिली निर्मल थाओ। तेनु शरीर मिलिया है, सत संगत मिली है, गुरबाणी मिली है, कीर्तन मिलिया है, कथा विचार मिलिया है, ग्रस्ता सुख मिलिया है, रुपया पैसा मिलिया है, और सब कुछ मुफ्तों मुफ्त मिलिया है। उस दाते ने दात विचो तेनु दिता है, मेर करके तेनु दिता है, और इस संगत विच आने लई कोई पैसा नहीं लगता, कोई टिकट नहीं लगती, सब मुफ्त मिलिया, तेनु मिलिया होया है। शरीर मिलिया है, विवेक मिलिया है, मन मिलिया है, गुरु मिलिया है, शब्द नाम मिलिया है, रहनी मिली है, संगत मिली है, कीर्तन मिलिया है, कथा विचार मिली है, सब कुछ तेनु मिलिया होया है। उस मिले हुए का फायदा उठा, पाव तू शरीर विच आया है। इस शरीर का प्रयोजन यह है कि तू वाहिगुरु नाम जप, क्योंकि कुछ ही सवासा का तू मेहमान है इस देही विच, अंतो गथवा इस देही नूं तू छड जाना है। ये देही तेरे पास सदा नहीं रहनी, टेम्परेरी फेस है। जिन्ना समा तू रह रहे हैं उन्ना समा तू वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता रहो, वाहिगुरु सुनता रहो। सत्संग कोई मुल नहीं लगता, यह सौखा काम है, इन सहज सिमरन कहते ने। आपो बोलते रहो, आपो सुनते रहो, कुछ समय बाद तुहानू पता लगेगा तुसी नहीं बोल रहे, कोई तुहानू बुला रहा है। तुसी नहीं बोल रहे, कोई तुहानू बुला रहा है, और कोई तुहानू ये वाहिगुरु सुना रहा है। तुहाडा अपना ही बोल मिठा हो जाएगा। जदों नाम रस इस रसना ते टिकना शुरू हुंदा है, इस प्राणी का बोल मिठा हो जाता है, इनू अपने आप च मिठास आनी शुरू हो जाती है। इहदा अपना स्रोत मिठा, इहदी अखां विच मिठास, कन्नां विच मिठास, वाणी विच मिठास, भोजन विच मिठास, उठण बैठण विच मिठास, इह सिख मिठा हो जांदा। गुरु नानक कितने मिठे सन इह तां गुरु नानक ही जाणदे ने, पर जिन्हां ने गुरु नानक सतगुरु नूं गठा है ना, उह वी जाणदे ने कि गुरु नानक कितने मिठे सन। वली कंधारे ने एक पत्थर रोड़ दिता, मरदाना तो डर गया पत्थर नूं वेख के। गुरु नानक कहण लगे शांत रहो, पत्थर रुड़दा होया गुरु नानक नूं वेख के खड़ गया। इन्ना मिठा पन गुरु नानक दा,

सुई महला पंजा साज पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस दिन अवर ना जाना राम मात पिता भाई सुत बंधक

आर संतों पैवास आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिनि परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा धरे सफल जन्म होआ भौ भग हर भेटिया एक मुरारी जिसका साथ ही मेल लिया ज्योति ज्योत माया नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया

रांग रखे अपने स्वामी से की मरण आवा जाय राम अविनाशी पाया नाम क्या है सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कन्हैया

गुरु रूप साथ संग जियो सनेमर पते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का महावाक गालबन चार पदियां दे चाहे चार छंदां दे चाहे इस वास्ते बहुत लंबा चौड़ा खुलासा करना ते कठिन। पहला जो पदा है इस विच जो केंद्रीय ख्याल मेरे पातशाह ने दिता है, मनुख समाजिक प्राणी है, इस समाजिक संबंधा तो बिना नहीं रह सकता। बच्चे दे जन्म समय अगर मां मर जाती है क्षमा करनी, प्यो मर जाता है इस बच्चे का जीवना औखा होएगा, कठिन होएगा। अगर भरा भी नहीं है, भैन भी नहीं है, औखा होएगा। जन्म दे समय मनुखी बच्चे नू मां बाप चाहिए। फिर संबंध सिर्फ इत्थे ही नहीं पूरे होंदे, फिर भैन भी चाहिए, भरा भी चाहिए, फिर मित्र भी चाहिए। समाप्ति इत्थे नहीं आउंदी, फिर पत्नी भी चाहिदी है, बच्चे भी चाहिए। अगर स्त्री का रूप है उससे भी यही नियम लागू होना, उन्हों भी माता पिता चाहिए, उन्हों भी बेड़ा चाहिए, उन्हों भी पति चाहिए। एक उम्र ऐसी आ गई आ जाती है उदो मां बाप की मंग ढिली पै जाती है, पति की मंग प्रबल हो जाती है। बाली रोवे नाए फकार, नानक दुखिया सब संग। हुण इस बाली नो, इस जवान बच्ची नो फकार चाहिए, पति चाहिए, जमदया मां बाप चाहिए, परा चाहिए, किससे माण करेगी, भैन चाहिए, किसके अगों दिल खोलेगी, सहेली चाहिए, किसके अगों राज उगलेगी। फिर हुण पति चाहिए, पति नाल ही प्यास नहीं बुझदी, हुण बच्चे चाहिए, पुत्र चाहिए, बच्चे चाहिए। मनुख समाजिक प्राणी है, समाजिक रिश्तों तो बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इन्हों सारे संबंध चाहिए ने, थोड़े अपने प्यार की तृप्ति इन्हों सारे संबंधों में वक्त के नाल नाल करता है। एक तो यह पहलू, पर जितने समाजिक संबंध ने लंबा चौड़ा सिलसिला बन जाता है, नानक ने फिर दाद ने फिर सहुरे, इन संबंधों में ऐसा होता है वारी वारी टुटते हैं। मैं टुट गया तो सारे संबंध टुट जाते हैं, तो मेरा कोई संबंधी टुट गया तो एक संबंध से टुट गया। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए, मैं अपने तो शुरू करा, मैं ही टूट गया, खत्म हो गया तो फिर मेरे सारे संबंध खत्म हो गए। जिन्ने सन या संबंधियां दे चों कोई टूट गया तां भी एक अद संबंध टूटेगा। समाजिक रिश्ते टूटते ने, जुड़ते ने, टुटते ने, दो रूपां च टुटते ने। एक तो सदैव ही टुट जाता है, मौत आ गई, इन्हां संबंधियां दे चों कोई चलाना कर गया, कहण देना मैं माफी मंग लवां
पिता चलाना कर गए, मां नहीं रही। फरीदा किथे तेडे मां पिया याद ते कर रहे ने फरीद भी, फरीदा किथे तेडे मां पिया जिन्नी तू जने सह पासे हो लद गए तू अगे ना पतीने, किथे ने मां किथे गए पिता। संबंध वारी वारी टूट देना, मैं टूट गया तो सारे संबंध टूट देने, नहीं तो वारी वारी संबंध टूट देने टूट देने, कुछ नवे जुड़ देने कुछ पुराने टूट देने। मां बाप रुखसत हो गए ने, पुत्र पोतरे पड़पोतरे आ गए ने, कुछ रिश्ते टूट देने कुछ जुड़ देने। इनू भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज ने जिस ढंग नाल बयान किया है ये भी सुनो। शरीर चौंके ऐ उपर खलड़ी चमड़े दी, चमड़ा स्किन। रविदास कहने ने चमरठा गांठ न जनाई, इस शरीर नू जुटी कहते हैं उन्हां दे अपने कहण दा ढंग। भावे मनुख ब्रह्म ज्ञानी हो जाए उसका पेशा ब्रह्म ज्ञान देश भी बोलता है। कबीर ब्रह्म ज्ञानी ने पर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान देश भी जुलाहापन झलकता है झलकता है। वो कहते ने कोरी को काहू मरम ना जाना, पता कोरी किसनो कहते ने जुलाहे जुलाहा, कोली नहीं लल्ले नाल नहीं है राह नाल है कोरी। राजस्थान यूपी मध्य भारत विच जुलाया नु कोरी कहंदे ने, ए कोरियां दा मल्ला है जुलाया दा मल्ला है कोरे। बनारस दे वासी सन कबीर कोरी कहंदे ने जुलाहे नु। कबीर कहंदे ने मैनू कोरी कह के पंडदे पयो, जुलाहा जुलाहा शूदर। तो परमात्मा भी ते कोरी है, बहुत वड्डा जुलाहा है। कोरी को काहू मरम ना जाना, सब जग आन तन आयो ताना, मैं ते थोड़ा जिहा ताना पेटा तड़ना, उन्हें वेखो कितना ताना तणिया होया, कितना ताना तणिया है। मैं ते मामूली जुलाहा हो कितना वड्डा जुलाहा, तो मैं ते छोटा मोटा शूदर होवांगा हो कितना वड्डा शूदर। ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੋਈ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। चमरठा गांठ न जनाई, मैं ये जुत्ती गंडने नहीं जानता। लोग गठावे पनही, ये जिड़ी दुनिया है लोग रहना ये गंडते ने, ये गंडाते हैं आप नहीं गंडते, लोग ही गंडते हैं। लोग ही अपनिया जुतियां गंडाते रहते हैं, पढ़ते ही रहती है गंडाते रहते, आप नहीं गंढते। क्यों? लोक गंठ गंठ खड़ा बिगोचा, हो बिन गंठे जाए पहुंचा। लोक गंढ गंढ के खज्जल खुआर हो रहे हैं। अगर शरीर जुती है तो बाकी शरीर भी जुती है। कभी प्यो नाल टूट दिए तो फिर जोड़ दें, कभी भरा नाल टूट दिए तो फिर जोड़ दें, कभी पत्नी नाल रुसेवा हो गया टूट दिए फिर जोड़ दें, कभी पति नाल टूट जाती है रुसेवा हो जाता है झगड़ा हो जाता है फिर जोड़ दें, कभी बच्चियां नाल टूट दिए तो जोड़ दें, कभी मित्रियां नाल जो है टूट दिए तो जोड़ दें, कभी बगौर मुताला करना सारी जिंदगी टूट दें तो जोड़ दें, ऐसे की लंघ जाती है। एक नाल टूटी जोड़ो, फिर दूजे नाल टूटी जोड़ो, फिर तीजे नाल टूटी जोड़ो।
ऐसा केरा घर है जिथे वक्ती तौर पर तनाव नहीं पैदा होता, जिथे वक्ती तौर पर रिश्तों च फर्क नहीं पैदा, एक घर भी नहीं है। रामा च मन मुटाव हो जाता है, प्यो पुत्र मन मुटाव हो जाता है, पति पत्नी च मन मुटाव हो जाता है, भैन विराह मन मुटाव हो जाता है, दो मित्रां विच मन मुटाव हो जाता है, जुत्ती पाट गई फिर गंढते हैं। हुण रविदास कहिंदे ने लोग गंठ गंठ खरा बिगोछा, सारी जिंदगी पाट दी है जुत्ती गंढ गंढ के लोकी खुआर हो जाते हैं, थक जाते हैं। एक नल टूटी गंढो, दूजे नल टूटी गंढो, तीजे नल टूटी गंढो, सारा समा इसे ही बर्बाद हो जाता है। लोग गंठ गंठ खरा बिगोचा, हो बिन गंठे जाए पहोचा। आप कभी गंढन की कोशिश ही नहीं की, क्यों? टूटी नहीं कभी, कभी टूटी नहीं। तोरी न टूटे सोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। इसनों जिस ढंग नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र वाक विच बयान किया है, ठीक है। टीकाकारा ने की लिखे है, पढ़े ने टीके, मैं एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खांदा। फरीदकोटिया का टीका भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खांदा, भाई वीर सिंह का टीका प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खांदा, प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका नवे आए टीके ज्ञानी हरबंस सिंह नाल मेल नहीं खांदा, ते ज्ञानी हरबंस सिंह का टीका निर्मलिया उदासिया नाल मेल नहीं खांदा। तो फिर किनू सही आखोगे? सारे सही ने। सागर विचों जिहड़ा जिहड़े कोने चो मोती कढ़ के ले आया, ठीक, जो जितना गहराई च चला गया उन्हने सागर की उन्नी गहराई की गल की है, क्योंकि सागर की की है, गुरबाणी की की है, सारे ठीक ने। पर यह तर्क बेमैनी हो जाती है, यह अर्थ टीके दे च नहीं है। तो सवाल पैदा होता है किहड़े टीके च नहीं है? टीके तो सारे वख वख ने। मेरे ख्याल 35-40 टीके होंगे जपजी साहब ने, कुछ तो गुरमुखा ने किए, गुरसिखा ने किए ने, कुछ होर विद्वाना ने भी किए ने, संत विनोबा भावे ने भी किया जपजी साहब का टीका, बिल्कुल साढ़े अर्थां नाल मेल नहीं खाता। आचार्य रजनीश ने भी किया, स्वामी कृष्णानंद ने भी किया, फिर की करोगे? इन्हां सारियां दे अपने अपने टीके ने। तो हुण तुसीं कहोगे विनोबा भावे गलत ने या स्वामी कृष्णानंद गलत है या आचार्य रजनीश गलत है या फरीदकोटिए गलत ने? सब तो पहले टीका कवि संतोख सिंह ने किया, गर्भगंज ने। हुण ओ जिहड़ा टीका किया ना उन्हां दा मेरे कोल है, हुण ते अजकल छपदा ने, इतना बिखम टीका है उन्हां दा जिहड़ा कीता होया टीका ना, पहले उसका भी टीका करो तां कुछ पल्ले पए, तां कुछ पल्ले, आम बंदियां दे पल्ले नहीं पएगा। एक ते उन्होंने भाषा वरती है सदूकड़ी, उस जमाने पंजाबी टीका ही नहीं किया, टीका किया उस प्राचीन भाषा दे, उस समय की भाषा दे। दूसरा इतना बिखड़ा, इतना अलंकृत, हुण उस टीके का भी टीका होवे ते पल्ले कुछ पवे? एक एक पौड़ी दी, जपजी साहब दी पौड़ी, कवि संतोख सिंह दसदे ने इत्थे गुरु नानक ने केड़ा अलंकार वरते है, इत्थे गुरु नानक ने केड़ा अलंकार वरते है। अलंकार गहणियां नूं कहिंदे ने, साहित नूं कविता नूं गहणे पवाने, साहित नूं शिंगारना संवारना। किहड़े किहड़े अलंकार गुरु नानक ने वरते ने? कवि संतोख सिंह सैकड़े पन्ने ते इसे जी रंग छड़ दे। इतना बिखड़ा टीका, हुण उसका भी टीका चाहिए, तो हुण तुसीं किस तरह फैसला करो केड़ा ठीक है? तो मैं अपना अनुभव थोड़े सामने रखते हैं, हुण पता नहीं तुसीं सहमत हो कि नहीं, सारे ठीक ने, एक भी गलत नहीं। आप अपनी बुद्ध है जैसी,
वर्ण तो भिन्न भिन्न दोए थे, सारे ठीक ने। किसी ने हाथी दे पैरां नू महान कह दिता, किसी ने कह दिता कन्न बड़े वड्डे ने, किसी ने कह दिता सूंड बड़ी वड्डी है, किसी ने कह दिता जिसम बड़ा वड्डा है। गर्ज के गल सारिया ने हाथी दी की थी और किसी की नहीं, टीका सारिया ने बाणी का ही किया, टीका सारिया ने शब्दों का किया है, पर जिहड़ा जिहड़ा उन्हां दे सामने गुण दृष्टि गोचर होया है वह कह दिता है। इस वास्ते किसी की यह तर्क से बिल्कुल बेमैनी हो जाती है कि टीके च नहीं है, तो सवाल यह पैदा होता फिर टीकाकार नूं कहना चाहिए तू क्यों नहीं लिखे है? टीके च होना चाहिए है। हुण मैं अर्ज करा यह जिहड़ा पहला छंद है इहदे महाराज तमाम समाजिक संबंधां दा जिक्र करदे ने, मां दा पिता दा भरा दा भैण दा मित्रां दा होर संबंधियां, इन्हां सारे संबंधां विचों एक भी ना आवे कुछ कमी हो जाती, कुछ कमी हो जाती। चलो हुण सुभाविक गल आउंदी है कि इस गल सज्जन की गल कर लगे मैं संकोच नहीं आता, उन्होंने अगे करके मैं असलियत बयान कर सकता। आगरे बैठे सन ज्ञानी कल्याण सिंह मेरे कमरे च, किधरे फिसल गया कि पैर चोट लग गई थी, कुछ चाहिदा सी हुण एक एक चीज की लोड़ पै जाती है बैठ गए। मैं तो घर से ठीक ठाक रहिंदे होके निकल गए क्योंकि दो साल पहले इन्हां दी पत्नी चलाना कर गई। कहने लगे ज्ञानी जी नूआं ते हैगियां ने पर उस मान नाल मैं चीज नहीं मंग सकता जिस ढंग नाल मैं दो साल पहले मंगदा सी, आ चीज मैनू चाहिए, काट लगदी। रिश्ता कोई भी ना होवे कुछ घट जांदा, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, भरा नहीं है, बहन नहीं है तो कुछ नहीं है, पिता नहीं है कुछ नहीं है, मित्र नहीं है तो समझ लेना कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ घट जाता है जब एक रिश्ता नहीं आता, घाट रहती है, बड़ी प्रबल घाट रहती है, पुत्र नहीं है घाट रहती है, मित्र नहीं है घाट रहती है, पिता नहीं है, मां नहीं है, भरा नहीं है, भैन नहीं है। मनुख समाजिक रिश्तों में रहिंदा है और सारे रिश्तों के संबंध चाहिए, ये संबंध सदीवी चाहिए उन तो फिर की करिए। एक संबंध में एको ही रूप है, पिता केवल पिता ही है, मां नहीं है। जनन जनन पित पर तिशा, मात पिता शकत ही। बड़ा सुंदर लिखे है कवि रहीम, प्यो दी प्रिख्या उदो आउंदी है जनन जनन पित पर तिशा। जननी अगर चलाना कर जाए, मां चलाना कर गई है नहीं रही, तो हुण प्यो दी प्रिख्या आउंदी है, प्यो अपने पितापन से पूरा उतरदा है कि नहीं उदों पता चल। ये हुण बच्चियां नाल उस ढंग का व्यवहार रख सकेगा कि नहीं। मां दे चलाना करन ते बच्चे बहुत वड्डी घाट महसूस करदे ने, और मैं अर्ज करा पिता दे ना होण ते बच्चे बहुत वड्डी घाट महसूस करदे ने। भरा नहीं है, भैण नहीं है, मित्र नहीं है, अगां चल के फिर पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पति नहीं है, ते ना होना घाट महसूस होती है, घाट बनी रहती है। रिश्तियां दी मंग, समाजिक रिश्तियां दी मंग मनुख दे प्राणा दे च है, बड़ी प्रबल है। लेकिन मैं अर्ज करा जो नुक्ता इत्थे सतगुरां ने दिता बयान करके मैं आखरी अर्थ तोरा, क्योंकि चार पदे हैं।
एक रिश्ता ऐसा है जिस विच असी सारे ही संबंध जोड़ सकते हैं, सारे। वो कौन है जो प्यो भी होवे ते मां भी होवे? मैं फिर अर्ज करा, पिता केवल पिता है, मां नहीं है। मां केवल मां है, भैन नहीं है। भैन केवल भैन है, भरा नहीं है। भरा केवल भरा है, मित्र नहीं है। एक रिश्ता ऐसा भी है जिस विच सारे रिश्ते असी निरूपण कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वो कौन है? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबने थाई तांबो खेया पारा। हे प्रभु, तू मां भी है, तू पिता भी है, तू बंधप भरा भी है, तू सखा मित्र भी है। सारे संबंध जेड़ा परमात्मा विच जोड़ लैंदा है, ते सारे संबंधां दी झलक जिहनूं परमात्मा विच मिलदी है, फिर उहदी दृष्टि की बन जांदी है? वह अपनी मां विच भी पिता नूं वेख, जो है परमात्मा नूं वेखदा है। ते मां नहीं मिली, इह परमात्मा मिलिया है मां दे रूप विच। इह पिता नहीं मिलिया मैनूं, इह परमात्मा मिलिया है पिता दे रूप विच। हुण गजब दी गल, बड़ी हिम्मत कीती है सतगुरां दी बाणी ने। मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म साई। सुत पुत्र, तू पिता है मेरा, पर हद हो गई, तू ही मैनू मिले है पुत्र दे रूप में, तू ही है। जे सारे रूप परमात्मा दे ने, तो पुत्र शैतान दा रूप है, पुत्र भी भगवान दा रूप है, उसे तो आया। हे प्रभु, मैं छोटा सी, मासूम सी, तू मां दे रूप च मिले हैं, पिता दे रूप च मिले हैं। अज मैं बुढ़ा हो गया, तू पुत्र दे रूप च मिले हैं। बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपयायो बैठ तो दैन। हे पुत्र, मेरे मुंह च देंदा है बुढ़ा, मैं मेरे हथा च देंदा है। प्रभु तू ही मिले हैं पुत्र दे रूप च, जद मैं कमजोर सी, छोटा मासूम सी, तू पिता दे रूप च मिले हैं। पर मैं हुण बुढ़ा हो गया, फिर कमजोर हो गया, तू नौजवान पुत्र दे रूप च मिले हैं, तू ही मिले हैं। जिहड़े सारे संबंध एक दफा परमात्मा च देख लैंदा है, फिर उन्हों माता दे च, पिता दे च, भरा दे च, भैण दे च, पत्नी दे च, पति दे च, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। मिलते ने मैनू कई, सानू तो सचखंड के दर्शन होए ने, पर आते बनते नहीं, मुकदमेबाजी चल रही है, सचखंड के दर्शन हो गए। कई बीबियां मिलदिया ने, सानू तो सचखंड की झलक मिल गई, पति नाल तेरा रोज कलेश, तो ऐन घर कलेश मचाया होंदा है, तेनू सचखंड के दर्शन होए ने। जे पति च सच नहीं दिखाई देता, तो किधरे भी सच नहीं। जे पत्नी च सच नहीं दिखाई देता, ऐसे मनुख का कहना झूठ ते पखंड। साडे देश दे च बड़ी कोशिश की गई थी, जिहड़ा पति है पत्नी नू देवी आखे, ते जिहड़ी पत्नी है पति नू परमात्मा आखे। कहो नानक जन प्रभु परमेश्वर कर जाने, वो परमेश्वर आखे, ओ देवी आखे, ओ परमात्मा आखे। ते हुण एक देवी है, एक परमात्मा है, घर ते मंदिर बन गए, घर ही मंदिर बन गए, घर ही धर्मशाल बन गई, घर ही हरि दा घर बन गया, क्योंकि पति परमात्मा दिखाई दे रहे, पत्नी परमात्मा दिखाई दे रही। ते जे पति भूत दिखाई दे रहे, ते पत्नी डायन दिखाई दे रहे, घर से शमशान घाट बने पे, और की है, पता नहीं कितने घर शमशान घाट ने। घर धर्मशाल होवे, ये ते कोई कोई होंदा, घर हरि मंदिर बन गया, ये ते कोई कोई होंदा है। गुस्ताखी माफ,
एक डायन दिखाई दे रही है, एक भूत दिखाई दे रहा है। इसे घर भूत खाना बनया पे, शमशान घाट बनया। फर्क सिर्फ इतना है, शमशान घाट विच मुर्दा जलाए जाते हैं, इत जिंदा ही जलते पे। इतने क्रोध की अगन दे जिंदा ही जलते पे। इतने ईरखा विरोध की अग दे जिंदा ही जल रहे हैं। यह भी शमशान घाट है, वह भी शमशान घाट है। एक जगह मुर्दा तन जलाया जा रहा है, एक जगह मुरझाया होया मन जलाया जा रहा है। दोनों ही शमशान घाट है। तो साजिक रिश्तियां दे जब प्रभु की झलक मिले, ये ब्रह्म ज्ञान यही संत है। तो जिन्हों समाजिक रिश्तिया प्रभु की झलक नहीं मिलती, ना मां दे ना पिता दे ना भरा दे, भरा नाल मुकदमेबाजी है। प्यो की कोई पुछ पड़ताल कोई नहीं, मां के दुख सुख दे शामिल नहीं आता, भैन का कभी हाल चाल नहीं पुछया, इन सचखंड के दर्शन हो। पत्नी इस तो बेजार है नहीं। जिहड़ा एक दफा परमात्मा की झलक पा लैंदा है तो परमात्मा विच उसनूं सारे रिश्ते दिखाई देंदे। परमात्मा एक रूप विच नहीं है, परमात्मा पिता है, मां है, भरा है, सारे रिश्ते उन्हों परमात्मा विच दिखाई देंदे ने। फिर परिवारक संबंधां विच निरंकार की झलक मिलती है। ये गुरमुख की ब्रह्म ज्ञानी की पहचान। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन वाक विच कुछ इस तरह का ही प्रवान कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी करा, क्योंकि खुलासा करा कि ये दो पंक्तियां जड़िया ने बहुत वड्डा खुलासा मंगदिया ने। भाई गुरदास जी ने इस उत्ते बड़ी रोशनी पाई है। थां थां ते गुरबाणी खोल दी है, फिर हुक्म ना

पर चोबन में मत अड़े कर पाउनी बलराम जियो मैली अवगुण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो गुण सार ना जानी परम पुलाणी जोबन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिरका सह न पाया सतगुर पूछ ना मार चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तन रड़े पा बिन फिर तन कुमलाणी बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो रव रहा जुग चार त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभुवन कंकर वै सुहागन अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागन रांड न मैले वेसे नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहुरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो न पल्ले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया मेट न सके कोई जानदी ना उमर है केवल रव रहे हाथ हो लोई माया निराशी रोए विचनी बाली बाले हेते नानक पास सब सुख मैली गुरचरणी प्रभ देते बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पई है बलराम जियो रहती देव का दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साथे फिर लोड़ी थी संजोड़ी मक पूरी प्रधाने संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विसरना ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राव सुही महला पहला संत हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया हम दिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच सबक तुम अनहद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो आप सब पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य सब सुवारे ज्ञान महारस नेत्री अनियंत त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम पर साजने आया मंथन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत तेक तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आपन राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल पै देवाने मन राख्या गुरु ठाए नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग तू ही महला पहला कर दीजा

कर आत्म लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाहो तनेरा राम मन चाहो तनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख सही नहीं केवल जन्म मरण दुखनासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए हर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहेड़ी साज सब ठाकुर देख राम सी राम गुण संग्रहम सी खरी सरसी जा रावी रंग राते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड़ियाए अमर अडोल अमोल अकारा गुरपूरे सच पाई है नानका पे जोग संजोगी नदर करे लिलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम पई देख गुणा अनहद सबत अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं थार नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना वे ना जाती।

कह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई होहे नीता नीता हूं बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा को हो वै वासला कड़वास नहीं जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुणे केरी छोड़ अवगुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कडवास लई जय आप करे किस आखिए होर करे न कोई आखणता को जाइए जे फूलड़ा होए जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले सुने देखे बाज कहे है दान अण मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई आप करे किस आखिए होर करे ना कोई सूरी मैला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे कोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले स्नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों छले परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सालाही है जिन कारण किया मैं लागी मन मैले है किने अमृत किया मत अमृत किया ये मन दिया गुर पे मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पिछाता जामन सा चैलाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो सालाही है जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम क्यों मन मानिया हर से राता साहेब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंचपू नाय को आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवन जाना ना सी ऐसा सी मत होई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर पावे समझे तू जय जानिए जे आप जनावे आप जनावे मार्ग पावे आपे मनुआ ले वे कर्म को कर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे तंत मंत पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर सबदी सच जानिया साधन होन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करह रलिया कर्म कर्म सब आया अठ अठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप मुझसे मत होती है क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विण नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया जगत सवाया कौन

मन पर देसी देसी है सब देश कराया। गुरमैली कर अपने सो पर तुरलीना, सेवक सेवा ता करे सच सबद पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे, आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे।

कोई ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल ना फुले जय जयकार करे तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य नीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरु अपने विटों जिन कारे सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुनो जन पाई सुख सोहिलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण कीने सहज सुभाए गुरमुख सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ पागा अंदरों दुर्मत तूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मे स्वामी तिन अंदिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा गुरते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविक सब गवाए सबको तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा जुग में राम नाम निस्तारा साजन आए उठे कर माही हर गुण गावे तृप्ता भाई हर गुण गाए सदा तृप्ता सी फिर भूख न लागे आए दै जिस पूज हो वह हर जन की जो हर हर नाम से आए नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजन आए उठे कर माही ओंकार गुरु प्रसाद राग तू ही महला तीजा कर तीजा भगत जना की हर जियो राख है जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख हो वह हों मैं सबद जलाया राम हों मैं सबद जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सच्ची भगत करें दिन राती गुरमुख आस वखाणी भगतां की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा मन भाया नानक भगत सोए दरसाते जिनी सच्चो सत्तमाया हर भगतां की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम हर भगत करे विचों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाणे राम गुण अवगुण पछाणे हर नाम वखाणे कै भगत मीठी लागी हम दिन भगत करे दिन राती कर ही मैं बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखे सदा नाले नानक से भगत हर कह दरसाचे अंगिन नाम समाले मन भगत करें बिन सतगुर भगत ना होई राम हों में माया रोग व्यापे मरजन में दुख होई राम मरजन में दुख होई दूजे पाए परज भी गोई बिन गुर तत न जानिया भगत भी होना सब जग परमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत होई भगता कह कर कारज साचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे नाम निधान सच पाया सदा फुट कदे नाम फुटे हर दिया सह सुवाया हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे गुर कै सबद सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोभा पाया सुही महला तीजा सबद सच्चे सच सोहेला जिच्छे सच्चे का होए विचारो राम हों मैं सब किलविक काटे साथ रखिया उधारे राम सत रखिया उधारे दुत्तर तारे फिर पाव जल करण न होई सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी जिन सच विखा लिया सोई
साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सतगुर सात बुझाया पस राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए प्रगाता जिन्नी सच जाता थे सच्चे होए हम दिन सत्य आयन नानक सच नाम जिन हृदय वसया ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे चित कर सोहिला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वर्तै सच्चो बोले जो सच करे सो होई जय देखा तै सच पसरिया अवर न दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावे मर जन में दूजा होई नानक सब कुछ आपे करता आप करावे सोई।

ममता करनाठी पाखंड परम गवाया। हौ मैं पीर गई सुख पाया अरोगत पै शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा। मन मुख विछड़ी दूर महल न पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूर विहाजे कूर लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे बिन सतगुरु मग न पाया उजड़ पंथ प्रमे गवारी खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता सतगुरु पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए हृदय तन उमाया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मेले विछड़ करे न जाए। सुही महला चौथा हर पहलवी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद तर्म दृढ़ो पाप सजाया बलराम जियो। तर्म दृढ़ो हर नाम से आवो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुरु गुरु पूरा आराधो सब सबकि पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वड़ पागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया। हर गुजरी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निर्भव पै मन होए हो मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा पर पूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए। हर तीजरी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडपागी पाया हर कथिए अकथ कहानी। हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिए मस्तक पाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया हर पाया बलराम जियो। गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंदिन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विदासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अविनासी। गुरु प्रसाद राजसूही संत महला चौथा हर दूजा। गुरुमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सह सुभाए। अंगन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रहे रिवलाए। वड्डे पाग गुरपूरा पाईए अंगन नाम से आए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए। संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए पय पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई प्रम पागा हौ मैं बिनती तीरा नदर प्रभु सत्संगत पाई निज कर हो आवासा। हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा। अंतर रतन विचारे गुरुमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कट चानन कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रभ साचे भाया जो प्रभ कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वियाहन आया वियाहन आया गुरमुख हर पाया सात अनकंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जियो आप सवारी। सुर नर गण गंधर्व मिल आए
अपूर्व जंज बनाई, नानक प्रभ।

प्रसाद। आवो संत जनों गुण गावे गोविंद के राम, गुरुमुख मिल रही है करवाजे शब्द कन्हेरे राम। शब्द

सुन परदेसी संत संग मिल रही है। हर पाई है पागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। एहू मन दी जाए संत ना की जाए गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आत वखाना। सुन बावरे क्या कीचे कूड़ा मानो सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो निकल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा। जीवत मरिए पौ जल तरिए जे पीवे कर्म लिखी आसा। गुर सेवी जय अमृत पी जय जिस लावे सहज ध्यानो नानक शरण पया हर द्वारे हौ बल बल सद गुरबानो। सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे पियो रेन जिनी प्रभ से आया। जिन प्रभ से आया तिन सुख पाया वड पागी दर्शन पाई है थियो निमाना सद कुर्बाना सगला आप मिटाई है। ओ तन भाग सुदा जिन प्रभ लगदा हम चिस्ते आप विच आया। नानक दीन शरण सुख सागर राख लाज अपनाया सुई महला पंजवा। हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो। हर अमृत परे पंडार सब किस है कर किसके बलराम जियो। बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभारा जुख सिमरत दुख कोई न लागे पौजल पार उतारा। आप जुबाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारथ मीठा अंदिन मंथन पीवा। हर आपे

फाइल खुल गई। कर्मां दा लेखा जोखा शुरू हो गया। अज अशु दे महीने दी विचार विच आपां इत्थे पुज्जे सां कि जेठ हाड़ दी तपत तों बाद भादों दी दुबदा तों बाद लोड़ प्रतीत होई कोई शीतलता सर्दी दी रुत आवे। सर्दी की रुत की आमद वास्ते गुरु ने आख्या तैनू उपराले करने पैणगे। फैसला दित्तो ने अश्रु पत्ते की है कि सर्दी रुत का एडवांस पहली तैयारी रुत सर्द अडंबरो अच्छू कट के हर प्यास सर्दी की रुत चाहन ये अषाढ़ की तपत तो दुखी हो गए परेशान ये भादों की उम्र

क्योंकि तेन पता हो जिथे शरद रुत रूपी प्रभु घर लिया प्रेम उमा की लोड़ है उथे कर्मां दे सुधार की भी लोड़ है कर्मां ने भी नेड़े लिया जदों किसी दिक्कतों में फस जाए जदों कोई तकलीफ आती है कर्म के करके ही तू दुख पैदा करने कर्म करके ही सुख पैदा करने में असी जेड़े पिछले दिनों में अर्ज की जेडे असी कहने ना मत्थे के लेख नाल ही दुख सुख आउंदा मैं उसकी किसी ने ठीक है कि रब लिखता है उनके लेख नाल ही दुख सुख आउंदा पर एक ख्याल करी वो लिखता तेरे कर्मों की फाइल में देख के दोबारा दोहरा दिया जो कुछ वो लिखता है ना वो तेरे कर्मों की फाइल देख के लिखता है। हमने श्री आसाई दीवार दी तौरी सुन रहे सो

मुंडा लपो की ले इनके कई रूप ने। ये मनुख अपने जीवन अंदर अपने आप की परख पड़चोल ही ना करे ते आखे जो कुछ मैं कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये भी कई बार गुरमुख की दुनिया में भी ऐसे वीर मिलते हैं जेडे आखते ने सारे गलत जो फैसला गुरमत प्रति मेरा है ना बस यो सब कुछ से आ जरा मेरा फैसले का मसला है ना इतने ही होमे खड़ी हो गई। गुरु ने आख्या जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं करे। जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोड़ करता उस मैं उस हों जिन्हें मेरे से मेरे सर्दी की रुत वर्गे परमात्मा विच दूरी पैदा कर दिती सी दरमियान विचों हना हटानी सी हों हों मैं विचों खो गए हों हों मैं विचों खो गए दूजा मेरे एको हो गए। उस सर्दी की रुत वर्गे परमात्मा नू अपने नेड़े लियाना जे घर हिरदे दे वेड़े विच लियाना है तो बहुत जरूरी है कि तेरे दरमियान तेरे दिमाग विच ये गल भी निकल जानी चाहिए कि जो कुछ कोई दुख आया वो मेरे रब ने दिता। रब कभी किसी नू दुख नहीं दिता बल्कि कह लगे जे तेरे मन अंदर उनके नाल प्यार का कोई रिश्ता है तो कभी प्यारे नू ए दोष नहीं लाई दा तू मेनू दुखी किया जेड़ा तेन दुखी करना तेरा प्यारा कदा हो जिंदे ते तेनू ए शक है कि वो मेरे लिए दुख पैदा कर सकना है उसे दुश्मन है तो मित्र कभी हो सकता दुश्मन तो ये शक होंदा है उसके को ये खतरा होंगे कि मेरे लिए कोई परेशानी ना खड़ी करे तो जे तू मन अंदर यह सोच रहा है कि मेरे लिए दुख ए उनकी मर्जी नाल आया मैं एक बार की जो मनुख अत दुखी हो तो कोई वस ना चले उदो सारा दोष रब से मर दिता है तो आखो चलो आखद चलो उनके पहाड़े गल की लफज कहना उनके पहाड़े है ये दोषी खड़ा पहाने का अर्थ है चंगा लगना इन्हें मतलब रब के भाने रब न यो चंगा लगता है मैनू दुखी कर दू है इस गल का जवाब मैं रुकी थी श्री गुरु साहब की बाणी में देता है कहने ने भलिया ख्याल करी सो सिख सखा बंधप है भाई जो गुर के भाने में आवे अपने भाने जो चले पाई भी छोटे जिन्हिया चोटा खाने जिन्ने दुख पैदा होंगे ने सारे तेरे अपने भाने करके तू वो कुछ कर रहे हैं जो तेन चंगा लगता है जो तेन पाते गुरु कहने इस गल तो तेन मैं चेतन करना चाहना तेन पता हो अगला मेरे रब न रिश्ता पाने का जोड़ा उपराला है वो ये है कि तेन ख्याल होगा

कर्म प्रतिचेतन हो। जो ये कर्म करेगा ओह जी नेड़ता जा दूरी पैदा होगी, ओह जा इंगाना भुगतना पा, फिर किसी को दोषी ना ठहराई। तेनू यह पता होवे कि जे तू अपने कर्मों में प्रभु का मिलाप चढ़ना है ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਖੀ ਨਾ ਚਲੋ।

παντού. Καρμή καρέ, παντού βρίσκει. Έστε τα αναζήμεντα παντού. Γκρου καλά και ο παλαιά. Κοίτα και σου να έχω πει. हां जेडे तू अपने कर्मा तो लेख बना ले ने संयोगां दे मिलाप दे फायदा उना दे हुन लिखे आ तोर संयोग जन लगी जी उस कर्मा तो पैदा होए संयोग दी निशानी की होवेगी ते उस संयोग रूपी कर्म लिखे किवें गए ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ? ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਚੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੱਡ ਭਾਗ।

फिर हमेशा दे वियोग विछोड़े दूर हो जाएंगे। जेडे जन्म जन्मात्र तक लोग विछड़े हुए ते विछड़े ही रहते ने, जिन्होंने मुड़ प्राप्ति चकी जो इस विछड़े की गल कहने वागू कि जो नर विछड़े राम सिंह ना दिन मिले ना रात। पता नहीं किन्निया जीवन दिया मंजिलां तय करनिया पैंदियां ने। गुरु ने बाणी विच भी आख दिता कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। पता नहीं मुड़ कदों वारी आवे। जेड़े एनी देर इंतजार से उड़ीक दिया घड़िया नहीं उड़ीक दे कई जीवन ने, गुरु कहते ने उन्हां तो बच जाएगा। जे वड्डे भागां नाल कर्मां तो पैदा होए होए वड्डे कर्मां नाल तेनू प्रभु मिला नसीब हो जाए।

कर्मण के कर्म लो कर्मा का सुधार की कर्मा प्रति चेतनता की कहन लगे सारे शुभ कर्मा नालों सब तो वड्डा कर्म है साध संगत विच जुड़ना जिस किसी नूं नसीब हो जाए क्योंकि इनके राही प्रीतम दे सरद रुत दी मिलाप दा एक चांस है। किसी भी गुरु ने आख्या कि हे दुनिया के लोगो मैं बहुत कुछ पालिया हूं मन तन खोजी पहल भलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसते जीओ। इसे भी हे प्रभु तेरे कोलों ये मंग करना

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह धन अखुट ना निखुट ना जाए पूरा सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर का सद बल जाए गौर कृपा ते हर मन वसाई एह तानिया खुट ना निखुट ना जाए पूरा सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर का औसत बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई से तनवंत हर नाम लिवलाई गुर पूरा हर तन परगासे आओ

कर तन देहि पानी धोतै उतर सुखे मूत मलेती कपड़ होए दे साबुण लिया धोए परिय मतवा पंकै संग हो धोपै न वह कै रंग बुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाह आपे बीज आपे ही खा नानक हुक्मी आवै जा तीरथ तप दया दत दान जे को पावे दिलखा मान सुनया मनया मन कीता भाऊ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मना ही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए सो अस्त आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति महाकवन जतो आकार वेल न पाईया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सिरठी कौ साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे कहो आपा जाने अगे गजाना सोवै पाताला पाताल लख आगासा आगास ऊड़ कूड़ कपाल सके वेद कहने कवात सहस अठारह कहन कते बास लूक कतात लेखा हुए ता लिखी है लेखा हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाह इति सुरत न पाईया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान गिरह सिधि माल तन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिवती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता कार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाही ताके अंत न पाए जाय एह अंत न जाने कोई बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ ए बड़ ऊंचा होवे कोई ते सूचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप नानक नजरी करमी दात बहुता कर्म लिखया न जाई वड्डा दाता तिल ना तमाई किते मंगे जूद पार कितिया गणत नहीं विचार केते खब तुट है बेकार केते लै लै मुकुर पाए केते मूर्ख खाही खाए केतिया दुख भूख सदमार एह पेदात तेरी दातार बंद खलासी पाणे होए हो राख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए हो जाने जेतियां मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे कही के।

केसरवतर देसा केसरवतर बेसा केसरवतर काल केसरवतर पाल केसरवतर हंता केसरवतर गंता केसरवतर पेखी केसरवतर पेखी केसरवतर काज केसरवतर राज केसरवतर सुख केसरवतर भूख केसरवतर त्राण केसरवतर प्राण केसरवतर देसा केसरवतर बेसा केसरवतर माने सदैव उन प्रधान के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकलो अलाम है के साहब कलाम है के उसनो वजू है तमाम रजू है मेसर सलाम है सलीकत बदाम है गनीम वाल सकाशता गनी वाल परा साहब अंदर मकान है जमीन वाल जमान है तमीजल तमाम है रुजू वाल नदान है हरी फल जी मैं रिया कुछ की मैं एकल तरंग है पेद है पंग है अजीजल नवाज है गनीम वाल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सदा है सदैव स्वरूप है पेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाद स्वरूप है गाद अनूप है ओंगाद रूप है नाथ स्वरूप है नंदी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है त्रिवर्गंग त्रिवादी गंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सर्वान रागे त्रिपुंग स्वरूप है जय सूत है के नरक प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है निरुक्त सदा है विभक्त प्रवाह है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है प्रभुक्त विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है जाचरी शंभ अभंग है नंग पेख लेख है अपरम है कर्म नाद जुगाद है अजय है पै भूत दूत है ना शब्द सदंध बंध है अभगत है विरक्त है ना सबरकाश है निजंत सुनता लेख लेख है लेख पेख है अटाह गाय संभ है गम है नीला नाद है नित सुनित जात जात है जरपट छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग ज्ञात प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद तव प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे अपांगंग विभूते परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न दाते न माते न जाते न पाते नृसाकं श्रीकामि तौमी कं सदैव प्रवाहे जय जय भगवती शंभ उद्धव प्रसाद के जार जूर है के हाजर है जूर है हमें सर सलाम है समाज कलाम है के साहब दिमाग है के उसनों चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी रहन दें के राज करहन दें गरी मुल कमा लें के उसनों जमा लें गरी मुल करा जाए गरी मुल नवा जाए हरी फुल सिकन है रासल बकान है कलंक प्रणास है समाज तुल निवास है अगंजल गनी मर जाए करीम है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहन दें के राज करहन दें गरीमल कमा लें के उसनों जमा लें गनीमल खरा जाए गरीमल नवा जाए हरी फुल सिकन है रासल बकान है कलांकंग प्रणास है समाज तुल निवास है अगंजल अग्नि मर जाए करीम है समाज तुल जवा है के साहब कराए कलांकंग प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है

दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर रक्षा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत बारा हमरे दोष्ट सब तुम काव आप हाथ द मोह बचाव सुखी बस है मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर रक्षा निज कर दे करे सब बैरन को आज संगरे पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई वरना त्याऊ जो वर चाहूं सो तुम दे पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे हैं मरण काल का त्रास ने भरे हैं हूजो सदा हमारे बच्चा सरिया तो जू करे और अच्छा

मन चाओ भया प्रभा गुण सुने हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने हर गाओ मंगल न सखिए सुख दुख न ब्या पे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जा पे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभाव मिलया करण कारण जोगो हे श्रीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्रीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सुवर मन न वसाया गुर प्रसादी हर

कहे नानक हर प्यारे जियो गुफान दर रख गए वाजा पौन बजाया यह सचा सुहिला सच कर गाव गाव तो सुहिला कर सच जिथे सदा सच त्यावे।

रोग वचन का बेमुख होए राम ते लगन जन्म बजोग खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सके किस थैरू वह रोज कीता किशु न हो वही लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब बयोग नानक कौ प्रभ राख ले मेरे साहेब बंदी मोच। कातिक होवे साध संग बिन सहे सबे सोच। नानक कौ प्रभ राख ले मेरे साहेब बंदी मोच। कातिक होवे साध संग बिन सहे सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहि

अब गुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कह सहज सुभाए। पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। एक अचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन बसाई। नाम अमोलक न पाया जाए, गुर प्रसाद

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई रंजन देव माला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ते आत्मा आत्मा मास दे

अर्थ संतोख का धर्म अगेर अथवा हो रेते रथ जते का जोर अगेर अथवा द्वापर रथ तपे का सत

कल मैं वेद अथर्वण हुआ, नौ खुदाई अलो पया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पटानी अमल किया। चारे वेद हो सचार, बड़े गुणे तीन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सुधाए, तो नानक मुखा।

होए तोती वस्त्र कपाट, जे जानस ब्रह्मं कर्म सब फोकट निश्चो कर्म, कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वास न।

प्रभु के सिमरन दुख जमन जाए, प्रभु के सिमरन काल पर हराए, प्रभु के सिमरन दुश्मन तराए, प्रभु सिमरत कछ बिगन ना लागे, प्रभु के सिमरन अंधन जागे, प्रभु के

सिमरन सबके सुजय। प्रभ कै सिमरन नाही जमत्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्णयासा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नाम अमृत माहे समाय। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पटवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रदान, प्रभ को सिमरै से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा बनासी, सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरै से परपकार, प्रभ को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावै, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अंध कनेर, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंध न जात, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कब हो न चोरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया, हर सिमरन कर पत्रताय, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंड जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सलाकारा, हर सिमरन में आप निंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन।

सदीप साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटाय अभिमान साध के संग प्रगटाय सो ज्ञान साध के संग बुझा कर नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु महेश मान साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग

साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्ब थान कम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कशका दर्शन पेट तो हो निहाल साधक संग कलूख धराय साधक संग

पावे साध के संग न तीर्थ जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरा साध सुन रसे साध के संग सुनो हरन

साधु कै संग कट कट दीठा साध संग पया गया कारी साध संग कट पई हमारी साध के संग मिटै सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जिता सुने तिता बखिया नहीं साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूचे मूची साध की शोभा साध बनियाई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोय और न पेठा एक बिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अस्तरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में

सुख सहज निवास, नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हित दास, ब्रह्म ज्ञानी

परतिरिय रूप न पिख नित्र साध की टहल संसंगित कर्ण सुने काहू की निंदा सब तो जाने।

साध संग पावै जन को कर कृपा अंतर तारे पश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे।

कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सद सदी जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्मरा सुख सह समावै अपने जन को सा सा समार नानक परमेश्वर के प्यार सुनो करण काल प्रभ एक है दूसर नहीं कोई नानक तिस बलहा।

आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई पुन थियो कबहु ऊंच नीच में बसै कबहु सोग हरक

ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद साधक मुख ज्ञान कबहू पीठ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो संगी दिखा

बिना संतोष नहीं कोरा जाए, स्वप्न मनोरथ पूछे सब का जाए। नाम रंग सर्व सुख होए, वडपागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार, इसके हाथा विचार। जैसी दृष्टि करे तैसा हो, आपे आप आप प्रभु सो। जो किनो सो अपने रंग, सबके दूर सबू के संग। दूजा देखे

परमेश्वर महाराज संत का निंदक राज देहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक कौ सर्व रोग संत के निंदक कौ सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संतावे ता उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसी का नहीं मित संत के दुखी को डाल लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख से तरे संत के दुखी को ना ही था नान संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अद भी के टूटे संत का दुखी कितने काज ना पहुंचे संत के दुखी को उद्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी

साध संग बिन सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटाए पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगाह नानक पूजल मथा बड़पागी ते जंजक माय सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करे विचार से सलमंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा

श्लोक सर्व कला पर पूर प्रभ बिरथा जनन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलह।

जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होए बिगास जो महाउतिया मार्ग पावे जो साधु संग मिल जो पुटावे जिन समसन की बाशो तूर नानक की हर लुचा पूर मन मूर्ख काहे बदलाई है पूर्व

अवरो त्याग दिखिया जंजाल तन तन कह सब को मुखी उजल हर दर कैसो ये व्यापार बल्ला व्यापार है नानक ता कह सब बलहार है चरण साज के तोते पियो अर्प साज को अपना जीवियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ पागी पाई साध संघर कीर्तन गाय अनक बिगनते साधु रख हर गुण गाय अमृत रस चाके ऊट गही संत दरिया सर्व

भगत भगत सुनिए तलो जा कह हृदय एको सच करनी सचता की रहते सच हृदय सच मुख कहते सच दृष्ट सच आकाश सच वरत

आनंद रूप मंगल सरजा कै सर्व थोक सुनिया करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय परतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया झांकी लीला कीमत नाहि सगल देव हारे अवगाहि पिता का जन्म कै जाने पूते सगल परोई।

नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जोतम तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठ बैठ सोवत नाम कौ नानक।

जन जन अपना प्रभु प्रसाता सोजन सर्व को का दाता किसकी शरण सर्व सुपावे किसके दर्श सब पाप मिटावे अवर सियान तो सगली साड किस जन की तू सेवा लाग आवन जान हो भी तेरा नानक किस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिसका नाम तिसका संग सिख उतरै नानक हर गुण गावस्तदी सतगुर सिखी करै।

पूर्ण उपदेशे पौचुका निरप हो बसै सगल ब्याग मंगते खै नसै जिसका साथ कृपा तारी साध संग जपना मुरारी चित पाई चूके परम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप

सिमरत सासत वेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंसत नानक फल पाए संग न चाल तेरा तनाम तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुच मी

प्रणाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन हो सिसार सर्व कल्याण सुख नित नाम पूर्त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश

आवे। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर गीत पनी सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसै पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देह निवास सर्व सु

मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक इक जानिया जन लागा हर एक तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बनियाई हुकम बो

संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुनै सुख बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, कर्ण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसै बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, किस प्रभ ते सगली उत्पत, किस पावै

मन अंतर की उतरे चिंद आस अंत त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के परलिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खीम कुशल सहज आनंद साध संग पद परमानंद

अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आज जंजाल विकार तेरते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रताप नानक निधि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत नीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब ते ऊचे

0: केलबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सचसा सवारी निर्गुणवंतड़िए पिर देखा दूरे राम गुरमुख जिनी रवे अमुइये पिर रब रहया पर पूरे राम फिर रब रहया पर पूरे वेखा जूरे जुग जुग एको जाता तन बाली पोली पिर सहज मानिया सहज पार आवै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस पा चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा पिर भावै शब्द रहे हधूरे सुहागणी जाए पुछ मुइए जिनी विचों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइए जिनी विचों आप गवाया विचों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंगे सौरलिया रंग सरलियां माणे नानक रंग सरलियां माणे सदा रंग राती सहजे माती अणदन नाम बखाणे कामुन बटभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामुन सहज राते जिन सच सिंगार बनाया हौ मैं मार मुइये तू चल गुर कै पहाए हार बार रावै आप सदा मुइये बिच निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बुझ जाए निज कर वासा पाई आप जाए सदा सुहागण नारी पर रली आला जो बन बाला अनदिन कंत सवारी हर बार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाई नानक कामण हर रंग राती जा चल सतगुर पाई वढ़ंस महला तीजा

0: ये दयाल न हो गए
1: दाता ही नहीं हो सकता।
0: जेड़ा दयाल नहीं और दाता नहीं हो सकता। दया पहला आउंदी है, तरस पहला आउंदा है, तद कुछ देन नूं चित करदा है। किसे दी थोड़, किसे दी लोड़, किसे दे दुख ते किसे दी बिपता दा एहसास पहला होवे तद उसनूं हरन नूं मन बनदा है। इसलिए दयाल पहला, जिन्नी देर दयाल नहीं हुंदा दाता नहीं बनता। दयालता दा दाते नाल संबंध है। उस तो बाद मैं एक अर्ज करा, दान एक तरह का नहीं, दान दाते भी मर्जी का भी नहीं। भला ऐसा समा आ जाए दाता भी हो, दयाल भी हो, दाते दे घर विच सब कुछ हो गए। मैं एक बार की कई बार ऐसा हुंदा है, मनुख दयाल हुंदा है, दया आउंदी है, पर कोल कुछ नहीं हुंदा। बड़े लोग ने संसार विच ऐसे जिन्हां नूं दया आउंदी है, तरस आउंदा है, लोड़वंद नूं कुछ देन नूं चित करदा है, ते कहंदे ने काश साडे कोल कदी तौफीक हुंदी, असीं कुछ देन जोगे हुंदे। ऐसा भी हो सकदा दया होवे पर दात ना होवे। कुछ चीजों का आपस में बड़ा रिश्ता है, दया होवे तां दाता, ते दात होवे तां दाता। ते दात होवे तां दाता, दया होवे दात ना होवे, तरस होवे मन पसीद जाए, चित करे कुछ देन नूं, पर कोल कुछ न होवे। एक होवे दूजी चीज ना होवे, दूजी होवे तीजी ना होवे, पता नहीं मंगते ने की उनकी थोड़ी केड़ी चीज दी है। ख्याल करो दान अपनी मर्जी का नहीं होता, वो मंगते की लोड़ से निर्भर करता है। ओनू की चाहिए, दान कोई एक तरह का थोड़ा है। शत्रु दा है ना, कभी उनके दाना की गिनती शुरू करिए ना। गुरु ने भी बाणी विचार दिता, कहने लगे

एक दयालु है। उनके कोलों किसी ने भी जीवन में कुछ मंगे है जेड़ा सर्वंश तक दान दे सकता है, भला केड़ा वड्डा दाता है। असी जे दिनों हो के गुरु कोलों सिखी अमृत से रहत मंगीए, जेड़ी रोजी पर मंगने कभी खाली न रही। मन नाल ये फैसला करिए अज तो गुरु कोलों रहत दिलों मंगनी, इस दिलों मंगनी, सिखी दिलों मंगनी, जरूर मिलेगी। गुरु दे रहे हैं, असी संभाल, गुरु बख्शिश करी संभाल सकिए। इन्हें शब्दों नाल सिमां दा जा चिखा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।